0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: छ गायक मोहन तामाङ। डान्सर तथा मोडल विमला थामी। मुख्य सहयोगी गडुल थामी। कार्यक्रम संयोजक कुलमान थामी। श्री सेतीचन्द्र भूमि संरक्षण समिति भीमेश्वर नगरपालिका नौ सुर्खे दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

उद्घोषक तथा गायक मोहन तमाङ डान्सर तथा मोडल विमला थामी मुख्य सहयोगी गडुल थामी कार्यक्रम संयोजक कुलमान थामी श्री सेतीचन्द्र भूमि संरक्षण समिति भीमेश्वर नगरपालिका नौ

0: सांबर के बनमा नाचने चन्मजुरा।
1: वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाउँ। वनमा आगो लाग्नै नदिउँ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौं।

0: अनुरोधक दीपजनपन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़बाट म बदी प्रसाद साहब कोटे आज विक्रम संवत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 जून 16 तारीख आषाढ़ 2 गते मंगलवार परेवा 3 घड़ी 54 पल मात्र अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गणेश जय गणेश देव, जय गणेश जय गणेश देव, गौरी माता पार्वती पिता महादेव, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौं है, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती गरौं प्रभु आती मा तुमारे, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, गौरी माता पार्वती पितै महादेव, हरि हरि सदै भरि भक्ति गरौं है, हरि हरि सदै भरि भक्ति गरौं है, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन छोडेर नजाऊ हो रुन्छन् मेरो मन, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन